जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

कि तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तय दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302565 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रवीन। आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गुरमीत और मीना की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना। एल्बम का नाम है भक्ति ज्ञान, उसी एल्बम में से निकालकर ये सुंदर और अति सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

लिए और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। चेतना शुक्ला की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में बस पेश किए गए। कुमार विशु की आवाज में अभी आपने सुना, चले अब की बार विक्रम हसरा की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है विक्रम हसरा की आवाज में।

यात्रा पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अपनी बार आज रविवार की सुबह के प्रोग्राम में हरिओम शरण जी के आवास में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

से अवसर मिला भगवान को नदी पार कराने का। केवट विनती कर रहा है कि प्रभु कुछ देर और इस

रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में अनुराधा पोर्टवल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ।

0: पोटवल की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। बाहर की ओर देखा जाए मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है और आज जब भी रविवार 10 तारीख मई है तो मात्र दिवस का दिन मुद्दा का दिन है आप सभी सुन वालों को शुभ मातृ दिवस बस पेश किया जा रहा है। फैन मुडडक सभी को बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी के साथ चाय के साथ हमेशा सुनने वालों बस सुनते हैं तो आप सभी के लिए भी और रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं आज का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर

मन्ना डे और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान, फिल्म जहरीला इंसान उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

घड़ीला इंसान फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जंजीर।

रेडियो SBS की सर ये फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म यकीन की ओर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लता के बाद चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

एक फिल्म यहूदी मुकेश जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले आज की प्रोग्राम में फिर से लता जी की ओर हम आप भूले चलते हैं।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सुनने वालों चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव जान। नई खतीन

की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। Sunnyvallo Studio का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60-60।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में एक गाना है की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

घर में श्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 10:00 प्रोग्राम में 9 मिनट वेटेड हो चुका है, 9:03 आज 10 तारीख में है और आज मातृ दिवस का दिन है, मदर डे का दिन। आप सभी सुनने वालों को हैप्पी मदर्स डे, फैन मुदा डाक आप सभी सुनने वालों को कहा जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले खास गाना बस प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, आज जबकि मातृ दिवस का दिन है तो सभी माताओं के लिए ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। मातृ दिवस के मौके पर सभी माताओं के लिए ये गाना पेश हुआ है मोहम्मद रफी की आवाज में, कि माँ है मोहब्बत का नाम। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद सेविका नीता के जरिए प्रोग्राम पेश किया जाएगी।

अपने माताश्री के लिए खूबसूरत गाना मांग करने के लिए सभी को पूरा पूरा मौका दिया जाएगी। सेविका नीता की प्रोग्राम में जो ठीक 12 बजे से शुरू होगा और उनकी प्रोग्राम में पूरा मौका दिया जाएगी अपने माताश्री के लिए मातृ दिवस के मौके पर गाना मांग करने के लिए। तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन 12 बजे तक जरूर सुनते ही रहना। सेविका नीता के बाद ग्लेन रामबाली की जरिए प्रोग्राम पेश किया जाएगी। 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम आप सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0832266611। इसी डार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में, द मूवी प्यार ही प्यार। 10:14 वेडिट हो चुका है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। सभी एपर्स, सभी जो एप किया है रेडियो SBS का एप पर शुक्रिया। अनहेल फाइन मुडर दाख

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म प्यार ही प्यार, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना बदांत फॉर ये एप, आपने कहा कि आपको गाना काफी पसंद आया मोहम्मद रफी की आवाज में जो पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है हेलो फाइड मुदादाख और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। उत्तराखंड लाइटसराय गिरधारी स्त्रात से भी राजन गिरधारी, आज राजन गिरधारी भी स्टैंड बाय है और हमारा प्रोग्राम इस वक्त घर पर अपना गार्डन में अपना टाउन में हाई वॉल्यूम के साथ हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। उत्तराखंड लाइटसराय गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी और आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी माताओं के लिए एक गाना मांग किया है जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और गाना ये है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सचिन देव बर्मन की आवाज में, राजन गिरधारी उत्तराखंड लाइटसराय गिरधारी स्त्रात से हर एक के लिए फैन मुदादाख के साथ गाना पेश कर रहे हैं और खासतौर पर सभी माताओं के लिए।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाना बस पेश की गई मेरी दुनिया है माँ। रेडियो वेस में इसके जरिए ये गाना पेश की गई और उत्तराखंड लाइट्स अराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी की तरफ से ये गाना पेश की गई सभी माताओं के लिए हर एक के लिए और फैन मुडाडा हैप्पी मदर्स डे हर एक के लिए बस पेश किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैंने आपको खबर किया 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और 12 बजे से सेविका नीता की जरिए प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, उनकी प्रोग्राम में आप सभी को पूरा मौका दिया जाएगी, हर एक के लिए मौका दिया जाएगी और गाना मांग करने के लिए अपनी प्यारी प्यारी माता श्री के लिए, अपनी प्यारी प्यारी माँ के लिए। मौसम आज का मातृ दिवस का दिन काफी खूबसूरत सुहाना मौसम है और आप सभी रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक को खबर कीजिए। अब ऐसे दुनिया की कोने कोने में सूरीनाम देश में, इंडिया भारत देश मॉरिशियस में और यूरोपा में काफी देशों में सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को वेलकम। हैप्पी मदर्स डे आप हर एक को पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। गाना जो आपकी बार होगा मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पोडवाल, उस समय 1988 में जब ये गाना रिलीज हुए थे, ये फिल्म रिलीज हुए थे, काफी पॉपुलर था मुझे मालूम है। उस समय भी रेडियो SBS का प्रोग्राम जोर तोड़ से उत्तराखंड शहर के अंदर में चल रहा था।

मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। 1988 का एक खास फिल्म का गीत पेश हुआ है, घर में राम गली में श्याम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया उस समय ये गाना काफी पॉपुलर था, जबकि 1988 में ये फिल्म रिलीज हुए थे। मुझे मालूम है उस समय हम रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश कर रहे थे, तो काफी सुनने वालों बस हमेशा तार कर रहे थे, गाना को मांग कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि आहिस्ता एनन फिर तक यार रेडियो SBS का प्रोग्राम हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्रेक्ट शहर के अंदर में। काफी पॉपुलर रेडियो स्टेशन है हॉलैंड देश के अंदर में। Natuurlijk met onze hele grote merknaam SBS. Har ek ki zubaan par ye naam hote hai ke aise Hollandese ke andar mein sabhi pure log ki zubaan par bhi SBS hote hai।

फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना आपकी बार ये होगा, जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो सच्चे के। आशा भोसले मोहम्मद रफी, घराना, फिल्म का नाम।

सिर्फ तुम ही तुम हो। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम बस सुनने वालों सुनते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। वेलकम ऑनलाइन देश का मोस्ट पॉपुलर रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम, संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, हम आपको खबर करना चाहेंगे, आज मातृ दिवस का दिन है, मदर डे का दिन है, तो आपको ये खबर किया जा रहा है। कल की प्रोग्राम में भी हमने आपको खबर किया तो काफी लोग जल्द से जल्द जाकर अपना टिकट को खरीदा है, और टिकट जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट जो पेश होने वाले हैं सोंदाग 24 मई रोटरडम आहोई में, तो मात्र दिवस के मौके पर और खानी साठोर्स जो है इस कॉन्सर्ट का

हर एक टिकट पर आपको दिया जा रहा है मेट कोर्टिंग स्कोड मोम 2026 मोम 2026 कोर्टिंग स्कोड के साथ आपको हर एक टिकट पर 15 यूरो कोर्टिंग दिया जा रहा है जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट पर Zondag 24 mei, जो पेश होने वाले है रोटरडम अहोई में तो जरूर मुलाकात होगा रोटरडम शहर के अंदर में सोमवार 24 मई मिलकर देखेंगे जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट द रॉक सागर एक जबरदस्त कॉन्सर्ट देने वाले हैं दारुम कराइए 15 euro korting speciaal omdat het moederdag is 15 euro korting op alle tickets dus wees er snel bij i-tickets.com usi website par jaakar apna ticket ko aap khareed sakte hain met kortingscode mom 2026 और रेडियो SBS का फेसबुक पर सभी इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है इस खास 15 यूरो कोर्टिंग के बारे में जो आपको हर एक टिकट पर दिया जा रहा है जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट पर तो चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना ये होगा मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बहुत सी सुनने वालों को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं हेलमोई नंबर्स ऑफ मुदरडाग मातृ दिवस का दिन सोमवार

सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं, रेडियो SBS का ऐप के जरिए फास्ट टेलीफोन लाइन के जरिए भी तार कर रहे हैं गाना मांग करने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने आपको खबर किया है कि अभी 12 बजे से सेविका नीता की प्रोग्राम पेश किया जाएगी, उनकी प्रोग्राम में आप जोर तोड़ से तार कीजिए, अपना गाना मांग कीजिए, तो जरूर सेविका नीता आपकी मांगी हुई गाना मातृ दिवस के मौके पर जरूर और जरूर पेश करेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, लित होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक सुनने वालों और कुछ सुनने वालों बस हमें खबर किया है कि दूसरे रेडियो पर लित होना चाहिए कि जब ये गाना मांग करना है, रेडियो SBS के पास लित होने की कोई जरूरत नहीं, आप जरूर तार कीजिए, हर एक को मौका है तार करने के लिए। Yohuf Hein Lit the Sign from Radio SBS. और लिट होने की जरूरत भी नहीं है जब आप फरमाइश से देना चाहेंगे। कहीं कहीं फरमाइश का दाम 7.5 तक, कहीं कहीं 12.5 तक, लेकिन रेडियो SBS के पास सुंदर लिट 5 यूरो पर फरमाइश, और आपकी फरमाइश दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस सुन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी साउंड में 5 यूरो पर फरमाइश, विवाह शादी जन्मदिन सालगिरह बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है, फरमाइश का दाम 5 यूरो पर फरमाइश। और एक सर्फस और आपको दिया जा रहा है, फरमाइश के बाद लिंक भेजा जाएगी ताकि घर पर पूरा के पूरा फरमाइश आप डाउनलोड कर सके। तमाम सर्फस कम दाम में इस महंगाई की जमाना में, एंड दैट सुंदर लिट

सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत ही सुनने वालों है जो रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम सुनते हैं, सुनने वालों भी अपना अपना रिएक्शंस देते हैं और फैन मुडा डाक भी कहते हैं। ऐप पर ऐप किया है यूत्रक्ष शहर से सकीला और सकीला भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। सभी को शुभ दिन पेश किया है फैन मुडा डाक यूत्रक्ष शहर से सकीला ढोंडाई जो रेडियो एस बी एस का ऐप पर भी ऐप किया है। यूत्रक्ष शहर से यानी महेश भी प्रोग्राम सुनते हैं। मोय लीचस लिखा है ऐप पर शुभ दिन पेश किया जा रहा है और ऐप भी अंदर आया है। ब्रजेश बीरबल, हाँ काफी लोग इनको बीरबल के नाम से जानते हैं और कहा है अनलिव्ड फॉर अ मुडर दाह। सभी को शुभ मातृ दिवस कहते हैं। यूत्रक्ष शहर से ब्रजेश बीरबल प्रोग्राम भी इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और खासतौर पर स्टाफोर्ड शहर से शांति मताओ, प्रेम और शांति मताओ घर पर भी प्रोग्राम सुनते हैं। सभी को एक शुभ मातृ दिवस मुडाडाक कहते हैं और इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं एक लाउस्टर मोयलीचस कहा शांति माताओ। और खासतौर पर राज एंटोवे शहर में लिखा है मोय नंबर्स, हाँ खूबसूरत गाने नखमे जो पेश किया जा रहा है। राज लिखा है एंटोवे शहर से मोय नंबर्स। डेनहाग शहर से कमला भी प्रोग्राम सुनते हैं। सभी को फैन मोय हैप्पी मुडर दाख कहा है कमला डेनहाग शहर के अंदर में प्रोग्राम जो सुनते हैं। शीला जहां तक हमें मालूम है कि रोटरडम शहर से हमेशा गाना मांग कर रहे हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। शीला के तरफ से भी इडरेन अन हेल फैन मुडा डाक अपने प्यारी प्यारी माँ के साथ अच्छी से मातृ दिवस मनाइए, खूब प्यार दुलार दीजिए अपनी प्यारी प्यारी माँ को। आप तो जानते हैं अभी सुना आपने, सब कुछ मिल जाता है लेकिन

इस वक्त माँ नहीं होते हैं। काफी सुनने वालों बस जोड़ तोड़ से ऐप कर रहे हैं और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ भी देते हैं। कहते हैं अब की बार बड़ा निराला बड़ा ही पावन। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रणूप की आवाज में ये गाना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा प्रणूप के आवाज में ये सुंदर गाना।

ये बंधन तो प्यार का बंधन है। गाना भी आपने सुना, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका और साथियों की आवाज में। आज मातृ दिवस का दिन है और बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शंस देते हैं। सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। अन हेलमोये फैन मुडडाग सभी को बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हमारा प्रोग्राम तकरीबन 12 बजे तक रहेंगे, उसके बाद सेविका नीता के जरिए प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और सोनू निगम की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सर है 11 बजे में। चले प्रोग्राम में जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। सोमवार 24 मई रोटरडम आहुई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाले हैं। मात्र दिवस के मौके पर 15 यूरो कोर्टिंग सभी टिकट पर आपको दिया जा रहा है। कोर्टिंग्स कोड मोम 20 26 20 i-tickets.com उसी वेबसाइट पर जाकर जुबिन नौटियाल का टिकट आप खरीद सकते हैं। सोमवार 4

गाना जो पेश की गई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जो भी नौजियाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना, सुनने वालों बाहर का मौसम काफी हसीन खूबसूरत सुहाना मौसम है और इस मौसम में आज मातृ दिवस के मौके पर खूबसूरत नख्मे बस पेश किया जा रहा है। चलिए मिलकर ये गाना को सुनते हैं, अनुराधा पोर्टवाल एंड कविता कृष्णमूर्ति।

कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बज प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम डे अबे प्लस द्वारा भी सुनाई देता है पूरा की पूरा हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और दूर दूर शहरों तक और बहुत सी शहरों में ये प्रोग्राम प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी सुनाई देता है डे अबे प्लस रेडियो के जरिए अपना मौतकार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और बहुत सी सुनने वालों भी इन दिनों डे अबे प्लस द्वारा भी प्रोग्राम को सुनते हैं। मोहम्मद रफी

मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुझे प्यार दे दो बा गाना जो पेश की गई उषा खन्ना या कहिए उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर। आज मातृ दिवस के मौके पर

गाना जो पेश की गए माँ मुझे अपने आंचल में बस छुपा लो। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए चेतना की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए। कुछ खूबसूरत नखमे आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है आज मातृ दिवस के मौके पर।

रेडियो SBS की जरिए पंकज उदास की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक दो नखमे के बाद मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा लूंगा। उसके बाद सेविका नीता की जरिए प्रोग्राम सुनते ही रहना। स्टूडियो में आ गए हैं, अपना तैयारी

ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारा प्रोग्राम से एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को मातृ दिवस का बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है हेले फाइन मुडरडाख और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी प्रोग्राम में खबरें पेश होगा, उसके बाद सेविका नीता की जरिए प्रोग्राम पेश किया जाएगी और उनकी प्रोग्राम में आप किया जा रहा है हेले फाइन मुडरडाख और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी प्रोग्राम में खबरें पेश होगा, उसके बाद सेविका नीता की जरिए प्रोग्राम पेश किया जाएगी और उनकी प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है।

और यहाँ से सुनने वालों, यहाँ से हम आरंभ करते हैं मुडडाख स्पेशल प्रोग्राम। मुझसे पहले आपका सेवा किया है हमारा साथी अनौसर रबीन, और आपको चिल्लाकर, गाकर, हंसकर बताया है कि एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है।

0: टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना। अभिजीत की आवाज में सुनने वालों आपने सुना।
1: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
2: आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंद्रनील ठाकुर। नील
1: जानती हूँ,
2: आप बेस्ट लॉयर हैं, आप मेरा केस लड़ो ना, वरना माया के पापा गुनगुन को ले जाएंगे।
1: तो मैं क्या करूँ?
2: आप अपने बेटे को प्यार नहीं करते
1: क्या?
2: अगर आपके बेटे को कोई ले जाए तो आप बेस्ट लॉयर नहीं ढूंढेंगे?
1: मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती। नाउ प्लीज गो फ्रॉम हियर।

शान और सुनिधि चौहान के वास में फिल्म मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, सुनने वालों, मूड डॉग स्पेशल प्रोग्राम चलेगा 1 से 2 बजे तक। जाने आपको मौका मिलेगा तार करने के लिए, और आप जरूर तार कीजिए 03-262-66-66-11 पर, और अपना गीत मांग लीजिए।

Just Walk Into My Life. ओ जानिमन शान और सुनिधि चौहान. फिल्म का नाम है मैं ऐसा ही हूँ.

कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। उमर वागिद हुसैन के वास में सुनने वालों, डॉग स्पेशल आरंभ होगा 1 बजे और आप जरूर तार कीजिए। तार का नंबर है 032266611। इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप से भी तार कर सकते हैं।

0: उमर वागिद हुसैन के आवाज में सुनने वालों आपने सुना एल्बम का बोले 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 3। इस बार आपको सुनाएगी संजय जोधा और ये गीत मांगा है
1: तेरे प्यार
0: स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम समवन स्पेशल। स्पेशल रिक्वेस्ट है शैलेश रामाधीन की तरफ से सभी सुनने वालों के लिए।

कवि ना बन जाओ। एक स्पेशल रिक्वेस्ट, हाँ सुन वालो, आपने सुना ये गीत मांगा है शैलेश रामाधीन, सभी सुनने वालों के लिए

उंगली पकड़ के चला, बाबुल सुप्रियो के आवाज में। यह गीत के साथ सुनने वालों हम आरंभ करते हैं मॉडर्न डे स्पेशल।

पकड़ के। हाँ सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका अनीता। स्टूडियो का नंबर है 0832 66 66 11।

आवाज सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। लेली स्टार्ट शहर से मांगा है ये सुंदर सा गीत शालिनी जगाई अपनी माँ रोहिमा के लिए और अपनी सास उषा के लिए।

लीली स्टार से ये मांगा है, प्यार मोहब्बत के साथ शालिनी जगाई, अपनी माँ के लिए रोहिमा और अपनी प्यारी सास के लिए उषा। हाँ सुनने वाला, आप सुन रहे हैं मूड डॉग स्पेशल और उत्तराखंड शहर से प्यार मोहब्बत के साथ रिकी सिवरतन और जीना सिवरतन की तरफ से अपनी प्यारी माँ के लिए शारदा सिवरतन के लिए, और आपको सुना रहे जुबिन नौटियाल।

0: उत्तराखंड शहर से रिकी सिवरतन और जीना सिवरतन अपनी प्यारी माँ के लिए, शारदा सिवरतन के लिए।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: हाँ, सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो SBS और ये है मुडडाख स्पेशल।

नाम है दसवीं दनिया। स्पेशल रिक्वेस्ट राजन गिरधारी और मुन्नी गिरधारी जो रहते उत्तराखंड शहर में लाइसराइन में, ये गीत मांगा है अपनी माँ के लिए। राजन गिरधारी अपनी माँ के लिए और मुन्नी गिरधारी अपने सास के लिए। जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन प्यार से याद करते हैं मुन्नी गिरधारी अपनी माँ को और राजन गिरधारी अपनी सास को।

0: पहचाना
1: स्पेशल सॉन्ग फॉर मदर्स डे
0: को जाना तुझको
1: और मांगा है उत्तराखंड शहर के रहने वाले राजन गिरधारी अपनी माँ के लिए राजन गिरधारी अपनी माँ के लिए मुंडी गिरधारी अपने सास के लिए

0: उत्तराखंड शहर से ये तार किया है स्टूडियो में निशान। हाँ निशान तार किया है स्टूडियो में और गीत मांगा है अपनी माँ के लिए। निशान राम सुदीत की तरफ से अपनी माँ के लिए।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
0: और माँ का नाम है नीता।

कितनी अच्छी है, सागर मालिक के वास में। और ये स्पेशल गीत मांगा है उत्तराखंड शहर से निशान अपनी माँ के लिए, अपनी माँ नीता के लिए। फिल्म माँ का आंचल, द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी।

0: मोहब्बत का नाम और ये स्पेशल गीत मैं पेश करती हूँ अपनी माँ के लिए।
1: आए जो बच्चों के
0: और सभी माँ जो सुनते हैं मेरे

उसके कदम छूना दुनिया की शान है। हाँ हमको मिला है जो भी ममता का दान है। हाँ बाग लगाती है माँ, फूल खिलाती है माँ, विपता उठाती है माँ।

0: man with a diamond voice, Mohammed Rafi. Film माँ का आंचल, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ तुझको हजारों सलाम। और ये स्पेशल गीत हमने पेश किया अपनी माँ के लिए, और आप जो सुनते हैं, आप माँ है तो आपको भी लिए। फिल्म खूबसूरत, आजकल माँ भी, माँ फोन पर भी रहते हैं,
1: लेकिन तभी मेरी रिंगटोन बजी मम्मी वाली।

जब माँ का फोन आया तब उठाना चाहिए, उसे गड़बड़ हो जाएगा। प्रिया पंचल और मौली देव, फिल्म का नाम है खूबसूरत।

सुनने वाला इसी गीत के साथ समाप्त होता है मदर डे स्पेशल। जो भी तार किया या व्हाट्सएप किया है, शुक्रिया, थैंक यू।

उमर वागिद हुसैन के वास में एल्बम का बोल है 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 3। इस बार आप सुनिए सुनने वालों बाबुल सुप्रियो। आप सुन रहे रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका नीता। पल पल दिल के पास तुम रहती हो।

0: एक प्यार का नगमा है।
1: नहीं तेरी मेरी कहानी,
0: जिंदगी कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है।
1: नगमा
0: नदीम खान के वास में,
1: मौजों की रवानी।
0: एल्बम का बोल है 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 2।

आनी ज्ञान, आपका नाम आनी है तो ये गीत आपके लिए। हाँ सुनो ले, एक दो गीत और होगा तो आप प्रोग्राम जरूर ही सुनते रहना।

हाँ सुनो ना, हमारा साथ यहाँ तक था, साथ देने के लिए शुक्रिया। आपने सुना मॉडर्न डे स्पेशल 1 से 2 बजे तक। थैंक यू। हमारा मुलाकात होगा बुधवार को, प्रोग्राम जरूर ही सुनते रहना 6 से 9 बजे तक। ए धोबिनिया। आप सुन रहे रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका अनीता, और हाँ मुस्कुराते रहना।

के रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में ये ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। अभी आप सुन रहे थे, मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से, ऑल फॉर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से।

Sunt Reina program se Commercials News. फरकेज इंफॉर्मेशन और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS.

30 euro. दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के नेहरू पाक या दुल्हा के बाबूजी के लिए नेहरू पाक या शेरवानी पाक फना 75 euro. बरातियन के शाल, कुर्ता पजामा ऑफ क्लार गमाकते गेले ऑफ विटे धोती फॉर 15 euro. Jongens, शेरवानी vanaf 25 euro. स्त्रियों के लिए पेटीकोट. हमारे खाते पीते भाइयों बहनों के लिए बड़े से बड़े साइज में कपड़े. आलस एंड आलस मुट वेग. साड़ी, अनारकली, चूड़ीदार, मटरकली, 300.

तीन बजकर इस वक्त पांच मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहे यहाँ से, वो भी हर रविवार को शाम में तीन से छह बजे तक सुनते रहना।

0: विशाल हीरा के वास में अभी आप सुनते और अब की बार सुनते रहना शर्वन शर्विन तेजू के वास में सुनते रहना
1: ए लड़की
0: के ए लड़की हम तो से मांगी बोले।

0: के हम तो से मांगिला बोले एक बात। शर्विन शर्विन तेजू के पास में भी आप सुने थे, रामदेव चैतू के पास में सुनते रहना,
1: टूटे डार से
0: गिरधारिस्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइद से
1: ये दुख हमसे सहा न जाए।
0: राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना।
2: रात सपना

हम दे उच्चाई तुके पास में भी आप सूरत के रात के सपना गिरधारी स्त्रात फ्लोइतुन फ्लोइतुर वायद से राजन गिरधारी, हमारा बीरमान राजन गिरधारी का पसंद तभी आप सूरत

0: गोरा गोरा है तेरा गाल, हम चूमा लेके या देके जाऊंगा।
1: सजनी गोरा गोरा है तेरा गाल।
0: वीरेश छेदी के पास मैं भी आप सुनते।

0: और चिरैया तो और चिरैया सुनते रहना आपकी बार इतने से अच्छा अच्छा कुमार नंदा का पसंद सुनते रहना।
1: जो वोगल मेन वोगल सामने सामने।

0: तो चिरैया मोर चिरैया वितरक से अच्छा है, अच्छा ही कुमार नंदा का पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से।
1: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा।
0: विशाल खेमई के पास में सुनते रहना।

रविंदर भोला सिंह के वास में भी आप सुने थे किस सुररिया में सरिया छीना। लाइव के जरिए वो भी हर रविवार को शाम में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। छल कपट और

परा दुनिया में ईमान है। सत्यानंद रेखा के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से हेमलता दीनदयाल के वास में सुनते रहना।

मातृ दिवस के मौके पर नंबर पेशी गई है सभी माताओं के लिए, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS की तरफ से। चार बजकर इस वक्त 9 मिनट गुजर रहा है।

032-62-66-11 स्टूडियो का तार का नंबर और साथ में 032-65-65-60 आप तार कीजिए वो भी हर एक काम के लिए जन की फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए आज नहीं तो कल जरूर से आपके काम आ सकता है आप तार कीजिए वो भी 24 घंटा लगातार।

मागे मागे फूल झरी अशोक मंसरन के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बार विनोद रखन के वास में सुनते रहना हेडल हेडल से हेन नारायण का पसंद सुनते रहना

विनोद रखन के पास में के कजरा लगा के जइयो ना हेदल से हेन नारायण का पसंद। अभी आप सुनते हैं।

0: भूपेंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में कि रात भर सोते न देवे,
1: हमें सोते न देवे।
0: देना देना से बेयार रमोतार की पसंद सुनते रहना।

वो भी माता दिवस के मौके पर। मातृ दिवस के मौके पर नंबर पेश किया जा रहा है सभी माताओं उसके लिए। उधर दाह के मौके

स्पेशली मातृ दिवस के मौके पर नंबर पेशी गई है सभी माताओं के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS की तरफ से।

0: फुलवा फूलल बा तोरंगनवा में और महकल बा कोना कोना में। आनंद भजन के वास में भी आप सुनते बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम
1: बंधन के
0: ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS वो भी शहर यूट्रेख्ट के अंदर से। रॉबी उदित राम के वास में के चली पी

0: रविंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में,
1: पैया चले
0: कि तू कहां से, तू कहां से ले ले रे पतोहिया।

उत्तरेखत लाइट्स रेंज से रज्जे सुदीत का पसंद तभी आप सूरत है। रविंदर भोला सिंह के वास में सुनते रहना। उर्दन से सूरज, सूरज जी बहुत का पसंद सुनते रहना।

रविंदर बोला सिंह के वास में भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से उर्दन, उर्दन से सूरज, सूरज जीबोध का पसंद।

द्रौपदी के वास में भी आप सुन रहे थे कि देखा जग का रीत। वितरक से उषा रामबली की पसंद अभी आप सुन रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं।

चंद्रवती जय तू के वास में भी आप सूरत है और आपकी बार सुनते रहना। आज की बैठक गाना प्रोग्राम से आखिरी नंबर सुनते रहना, वो भी शंकर चंद्र बोस के वास में।

बस समाप्त होने पर आया, समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द। बस समाप्त होने पर आया, समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu, jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में, गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाँ फेरदर मैं शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अब द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम तत लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी और द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। एन खसों दूर जुबे नौटियाल कौम होने लगा और द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना, क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन इट इज अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय, दी तैयार वारे से आन इट डेटे। Uit de film Want It komt het volgende liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.